Nama tribunali tanu, edita sakala sansar. Kaushik suno, vanda ehman, kutila kala vasa nija kula ghala. Tuma hata kahu jo chaha ubara, kahit taap bal rosho hamara. Sur samad karani karahi, kahina janavahi aap. Nityaman rana payani, kayar karahi pralaap. परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु नकुल हि प्रसंसि कालहु डरहि न रण रघुवंशि विप्रवंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुमहि डराई सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के उखरे पटल रसु